है झूम झूम रात ये सुहानी फ्रॉम मूवी लव मैरिज. दिस मूवी बाय द वे बिकेम प्रीटी पॉपुलर बिकॉज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर बिकॉज पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट पर्टिकुलरली इन बॉम्बे. एंड देवानंद अर्न द बेस्ट एक्टर नामिनेशन फिल्म फेयर नामिनेशन बट ही लॉस्ट टू राज कपूर फॉर अन्नाड़ी. एंड थर्ड कंटेस्टेंट वॉज दिलीप कुमार फॉर पैगाम. इन द सेकेंड आवर आई विल बी प्लेइंग आई थिंक थ्री सॉन्ग्स फ्रॉम पैगाम फॉर यू. This movie, you know, great songs. The four I played for you, and I think there are about five more songs. For example, कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए हम, किसी की निगाहों से टकरा गए हम. Again, Devanand happily singing on the home terrace as after he overhears Mala Sinha expressing her love for him. She is secretly watching. Whole bunch of other songs, but anyway, one of them, cricket-oriented song. She ne khela hi se aaj cricket match, aur ek nazar mein dil bichara ho gaya LBW. The next song I want to play for you is from a pretty nondescript movie, but good song. Madari is the name of the movie, 1959. Lata Mangeshkar Mukesh duet, Binakanam 28 in 1959. The cast of this movie was Manohar Desai and Jayashree Gadkar, supported by Sundar Singh and others. Binaka number 28, as I said, in 1960, not 59. Madari, Kalyanji, Anandji music, Farooq Kaisar Lord directs. Dil Lootne Wale Jadugar, Ab Maine Tumhe Pehchana Hai, Nazre Tumhe Uthakar Dekh Zara, Tere Samne Ye Deewana Hai. Melodious song. I hope you enjoy it.

सजन सन काहे नेहा लगाए राग तिलंग ताल कहरवा क्लासिकल बैंड सॉन्ग. द नेक्स्ट वन आई गोना प्ले फॉर यू फ्रॉम दिस मूवी इज farthest away from a classical song. It's Asha Bhosle sung song, picturizing Helen at a rooftop nightclub dining type of setup, doing an exotic, superb, fast-paced dance to keep up the fast pace of the tune of the song. And Mala Sinha in a man's disguise and Nishi in an upset mood are there. And the song is गैर की गली में पिया तूने मेरा नाम लिया मुझे बदनाम किया हाय हाय हाय जिसको देखूं अब कहता है दिल है अजी दिल है. एंजॉय द सॉन्ग.

पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा र

आई मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

ओ अमीरों के परमेश्वर, ब्यूटिफुल पोएम बाय द वे. ओ अमीरों के परमेश्वर, हम गरीबों की भी ले खबर. देख हम लुट रहे हैं तेरे राज में, कुछ हमारा भी इंसाफ कर. सीरियस सॉन्ग. द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन टू प्ले फॉर यू फ्रॉम दिस मूवी इज एक्चुअली लॉट द अदर एक्सट्रीम, वेरी अपबीट सॉन्ग. मैं क्यों ना नाचूं आज कहो जी, आशा भोसले सोलो गेंद. मैं क्यों ना नाचूं आज कहो जी, मेरा जी आया लहराया, जाते जाते कोई मेरे पास लौट आया. मैं क्यों ना नाचूं आज कहो जी. पिक्चर वैजयंतीमाला एंड स्टेज परफॉर्मेंस, ग्रुप डांस काइंड ऑफ सेटिंग. टैलेंट ऑफ वैजयंतीमाला एज एन अकम्पलिश डांसर इज ऑब्वियस. दिलीप कुमार इज सीटेड इन फ्रंट रो विथ वी सरोजा देवी नेक्स्ट टू हिम, बट सीम्स टू बी peeved as Dilip Kumar is engrossed in the dance, not paying any attention to Saroja Devi. Saroja Devi is the daughter of Motilal Rajwansh, the mill owner where Dilip Kumar works. This is a great song. I hope you enjoy it.

मैं क्यों ना नाचूं आज का हो जी फ्रॉम मूवी पैगाम द लास्ट सिलेक्शन फ्रॉम पैगाम इज मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले ड्यूएट पिक्चराइज्ड ऑन जॉनी वॉकर एंड मीनू मुमताज सिंगिंग एंड डांसिंग अवे इन फ्रंट ऑफ ए क्राउड एट द गेट ऑफ ए टेक्सटाइल मिल ओन्ड बाय मोतीलाल राजवंश इन द मूवी एंड दिलीप कुमार इज अ वर्कर देयर राजकुमार इज अ वर्कर देयर एंड बी सरोजा देवी इज डॉटर ऑफ मोतीलाल राजवंश शी gets attracted to Dilip Kumar, but he ignores her. Anyway, this is one of the three songs pictured on Johnny Walker in this movie. Very, I think that's a record. Words before the song starts is, Suno suno hai pandit logo, suno suno maulana. Are apna ye sansar hua hai, bilkul pagal khana. And then, Satyanarayan ki katha mein ab to basta hai filmi gana, o filmi gana, o filmi gana, o filmi gana. बदला सारा जमाना बाबू बदला सारा जमाना हे द सॉन्ग

0: अरे गजब भया रे भाई हाय हाय हाय, केला गुरु को चूना लगाए, जनता को जो किसी उल्लू बना, अरे दूध वाला दूध में पानी मिलाए,
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए, आदमी भी तो साथ बाजी है हाय, मौका मिले तो भगवान भेज खाए,
0: मौका मिले तो भगवान भेज खाए, हाय हाय हाय हाय। कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या?
0: मंदिर में जूते।